0: दुआ वो शक्ति है जो शब्दों से नहीं दिल की सच्ची भावनाओं से निकलती है। ये केवल अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की कामना करने का सुंदर माध्यम भी है। सच्चे मन से की गई दुआ रिश्तों में अपनापन बढ़ाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए हर दिन किसी के लिए एक अच्छी दुआ जरूर करें, क्योंकि दुआएं अक्सर वहीं से लौटकर आती हैं जहां से वे निकली होती हैं।
1: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

0: ज्योतिका रॉय के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है हमारे इन द्वीपों में विंग्ड बीन की खेती। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आहार में सब्जियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सब्जियां हमारे आहार को संतुलित बनाने में हमारी मदद करती है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। विभिन्न सब्जियों में विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन एक अहम भूमिका निभाती है और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं विंग्ड बीन

0: इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विंड बीन की फलियां कच्ची अवस्था में सब्जियों के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके कंदीले जड़ें, पत्तियां, टहनियां, शाखाएं एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग में लाया जाता है। सोयाबीन की ही तरह इसके खाए जाने वाले भाग में अत्यधिक प्रोटीन होता है। विंग्ड बीन की फलियां वानस्पतिक तेल की भी अच्छी स्रोत हैं। इनके बीजों में 30 से 40 प्रतिशत प्रोटीन तथा 15 से 20 प्रतिशत तक तेल होता है। विंग्ड बीन की कोमल हरी फलियों में 2 से 4 प्रतिशत प्रोटीन उपलब्ध होता है। विंग्ड बीन के कंद वाली जड़ों में 11 से 15 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जो कि आलू, शकरकंद आदि से 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। किसान भाइयों, विंग्ड बीन में टैकोफेरॉल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ए के उपयोग को बढ़ाता है। विंग्ड बीन को हम एक बहुवर्षीय फसल के रूप में उगाते हैं। इसकी किस्में प्रायः फैलने वाली होती हैं। फल बड़े, हल्के नीले या सफेद होते हैं। विंग्ड बीन की फलियां चौकोर एवं चारों किनारों पर पंख होते हैं, इसी कारण इसे विंग्ड बीन कहा जाता है। किसान भाइयों, फलियां 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इस फसल में बुआई से 50 से 90 दिन बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। फूल आने के 15 दिन बाद फलियां बननी शुरू हो जाती है। जहां तक विंग्ड बीन के लिए जमीन के चुनाव का सवाल है, तो इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, शर्त यह है कि जमीन में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। भूमि का पीएच मान 4.5 से 8 के बीच अगर हो तो उपयुक्त होता है। विंग्ड बीन की बुआई थालों में की जाती है। पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 1 मीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। जहां तक खाद एवं उर्वरकों का सवाल है, तो विंग्ड बीन के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत होती है। पौधे अंकुरित हो जाने पर उन्हें किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ने देते हैं, फिर ऊपर बांस या तार से पंडाल बना देते हैं, जिस पर कि इनकी लताएं फैल जाती हैं। किसान भाइयों, साधारण रूप में जैसा कि हमने आपसे बताया, 50 से 90 दिन में फूल आ जाते हैं और 15 दिन बाद फलियों की तुड़ाई की जा सकती है। कच्ची फलियों को तोड़ते रहने से 7 से 8 महीने तक हरी फलियां मिलती रहती हैं। प्रत्येक लता से कम 70 से 75 फलियां प्राप्त हो सकती हैं। अतः किसान भाइयों, इस प्रकार बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप विंग्ड बीन की खेती करेंगे, तो इस पौष्टिक सब्जी को उगाकर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो पाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यही आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी हडपे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर बुधवार 10 तारीख को सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 11 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी कैम्बलवे लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 8 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल रात 9 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी कालीघाट आज सवेरे 7 बजे कार्निकोबार जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर 12 बजे कार्निकोबार से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान में भी रुकेगा। जलयान सिंधु नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज

0: स्नान सिंधु नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी पिलोमिलो स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान परसों बुधवार 10 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बहुत ही रोचक और विशाल दुनिया में, सागर की दुनिया में। सागर सिर्फ पानी का बड़ा विस्तार नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। सागर की लहरें बहुत कुछ कहती है, इसकी गहराई को कोई जान न पाया। लहरें आती है और चली जाती है। तो श्रोताओं, आइए अगले कुछ मिनटों में हम सागर की लहरों में खो जाते हैं। श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होता है तो उसके दिल में अपने किसी खास इंसान की यादें और भावनाएं जाग उठती है। सागर की लहरें जैसे लगातार आगे बढ़ती और लौटी रहती है, वैसे ही इंसान के दिल में भी यादों का सिलसिला चलता रहता है। किनारा उन पलों का गवाह होता है जहां इंसान अकेलेपन, प्यार और यादों को महसूस करता है। और कभी कभी सागर की शांत लहरें भी दिल की आवाज को और तेज कर देती है।

सागर किनारे। श्रोताओं, जैसे सागर और किनारा एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही दो प्रेमी भी एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। सागर की विशालता को किनारा दिशा देता है और किनारे की पहचान सागर से होती है। दोनों का रिश्ता गहरा और अटूट है। उसी तरह बहार आने पर फूल खिलते हैं और फूलों से ही बहार की सुंदरता बढ़ती है। जैसे प्रकृति में कुछ चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी है, वैसे ही प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता भी है। इस सुंदर माहौल में जब समुद्र, किनारे, फूल और बहार सब एक दूसरे के साथ है, तब यह एहसास और गहरा हो जाता है कि तुम मेरे हो और मैं

0: हम तुम्हारे।
1: श्रोताओं, प्रेम एक विशाल सागर की तरह है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। जैसे सागर में अनगिनत पानी की बूंदें होती है, वैसे ही तुम्हारे प्यार में दया, ममता और करुणा का भंडार भरा हुआ है।

0: तो श्रोताओं, आज के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस सुंदर सफर के अंत की ओर हम पहुंच चुके हैं, जहां हमने सागर की गहराई, उसकी विशालता और उससे जुड़ी कई चीजों को महसूस किया। आशा है कि आज की यह प्रस्तुति आपके मन में सागर जैसी शांति और गहराई छोड़ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी शाहिना शमीम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 263वीं कड़ी।

देवर्षि नारद का माया जनित मोह टूट चुका है। प्रभु को अनुरूप पाकर उनके चरणों में बैठ नारद जी अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। प्रभु ने अपनी माया से प्रेरित करके जब उन्हें मोहित किया था तो वे विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए आकुल हो गए थे। देवर्षि की जिज्ञासा यह जानने की है कि तब किस कारण प्रभु ने उन्हें विवाह नहीं करने दिया था। हर्षित होकर श्री रघुनाथ बोले, जो समस्त आशा विश्वास को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती।

सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्ववत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती है।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 263वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, रविंद्र साठे और शोभना शंकर, तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुई हैं। अब लीजिए सुनिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, नवाचार और युवा शक्ति पर दिया प्रेरणादायक संदेश पर समाचार वार्ता।
1: देशवासियों के जीवन में प्रेरणा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करने वाला लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात एक बार फिर अपनी 134वीं कड़ी के साथ सामने आया। इस बार प्रधानमंत्री ने न केवल खेल जगत की ऐतिहासिक उपलब्धियों की चर्चा की, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, शिक्षा और जन भागीदारी से जुड़ी कई प्रेरक कहानियों को भी श्रोताओं के सामने रखा। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें भारत के हर कोने से उठ रही सकारात्मक पहलों को एक सूत्र में पिरोते हुए यह संदेश दिया गया कि देश की प्रगति उसकी जनता की सामूहिक शक्ति में निहित है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने देश के खेल जगत में हाल ही की उल्लेखनीय उपलब्धियों से की। झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां 4 अलग अलग इवेंट्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। इन उपलब्धियों में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार जैसे खिलाड़ियों का योगदान रहा। विशेष रूप से 100 मीटर दौड़ में

0: दो दिनों के भीतर तीन बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटना एक असाधारण उपलब्धि रही जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने दोनों एथलीटों से फोन पर बातचीत भी की जिसमें उनके संघर्ष, पारिवारिक पृष्ठभूमि और खेल के प्रति जुनून की प्रेरक कहानियां सामने आईं। प्रधानमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धात्मक भावना और आपसी सहयोग की सराहना करते हुए इसे स्पोर्ट्समैनशिप की अद्भुत मिसाल बताया। प्रधानमंत्री ने देश में पड़ रही भीषण गर्मी का उल्लेख करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और पर्याप्त जल सेवन की सलाह दी। उन्होंने भारतीय पेय पदार्थों जैसे आम पन्ना, लस्सी, छाछ, सत्तू, कोकम शरबत, नीरमोर और बेल पना का उल्लेख करते हुए बताया कि ये न केवल शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता का भी प्रतीक हैं। कार्यक्रम में आम की विविध किस्मों की भी चर्चा हुई। अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, जरदालू, चौसा, हिमसागर आदि जो भारत की कृषि समृद्धि और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने केरल के आलुवा में साजी वलाशेरिल द्वारा चलाए जा रहे स्विमिंग क्लब का उल्लेख किया जहां हजारों लोगों को तैराकी सिखाई जा चुकी है। यह प्रयास एक नौका दुर्घटना से प्रेरित था जिसने यह संदेश दिया कि छोटे प्रयास भी बड़े जीवन रक्षक परिवर्तन ला सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को लौटाई गई चोलकालीन ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली प्राचीन ताम्र पट्टिकाओं की खोज को भी महत्वपूर्ण बताया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती रुचि पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न एस्ट्रोनॉमी क्लब्स जैसे बेंगलुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, एस्ट्रो केरला और बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं को इस क्षेत्र से जुड़ने और विज्ञान आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन के सफल रेस्क्यू का उदाहरण दिया गया जिसमें 13 घंटे के प्रयास से एक डॉल्फिन को सुरक्षित बचाया गया। यह कार्य नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत संचालित डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के माध्यम से संभव हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता द्वारा मनोरमा नदी की सफाई का प्रयास और गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बाल कृष्ण अय्या द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के कार्य को भी प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। शिक्षा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में चेन्नई की गिरिजा अम्मा का उल्लेख किया जिन्होंने विद्यार्थियों के माध्यम से सैनिकों के लिए लगभग 40 लाख रुपए का योगदान एकत्रित किया। यह पहल एक रुपए प्रतिदिन जैसे छोटे संकल्पों से बड़े राष्ट्रहित के कार्य का उदाहरण बनी। मन की बात की 134वीं कड़ी यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत की असली ताकत उसके नागरिकों की सोच, संवेदना और सक्रिय भागीदारी में निहित है। चाहे खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड हों, वैज्ञानिक खोजें हों, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो या पर्यावरण बचाने की पहल, हर क्षेत्र में देश के लोग अपने स्तर पर परिवर्तन की कहानी लिख रहे हैं। यह कार्यक्रम न केवल प्रेरणा का स्रोत है बल्कि यह भी दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े राष्ट्र निर्माण की नींव रखते हैं। प्रधानमंत्री का संदेश यही रहा कि समाज में सकारात्मक सोच को पहचानें, उसे प्रोत्साहित करें और स्वयं भी बदलाव की इस यात्रा का हिस्सा बनें।
1: श्रोताओं, अभी आप मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, नवाचार और युवा शक्ति पर दिया प्रेरणादायक संदेश पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप एक देशभक्ति गीत का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को समुद्र में 11 जून तक न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी दी जाती है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर भारी वर्षा होगी, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और द्वीपों के एक या दो भागों पर गरज के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। कल सवेरे तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विद भारती से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुन सकेंगे रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल, गुलाम अली, चंदन दास।

और मनहर उदास। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तरानी सुहानी कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित मानस चक्रवर्ती का गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1301 कड़ी आप सुन पाएंगे दिन के 11 बजे। 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे विजू शाह के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्मी गीत। दोपहर 12 बजे तेलुगु में सुनिए कार्यक्रम गान लहरी। मलयालम में 12:30 पर होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुनिए 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे किम्यूस गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर फनकारा होंगी अनुराधा पौडवाल। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीत। 5:30 पर बांग्ला में सुनिए युवाणी कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे डॉक्टर जयसुंदर से बातचीत की जाएगी। पॉप मसाला कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में विश्व महासागर दिवस पर चर्चा के बाद होगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी 11:40 पर। यह थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये वीरता पुरस्कार समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुन पाएंगे रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समुद्र मंथन मिशन के तहत ऑयल इंडिया ने अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज में दूसरी सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की कल 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। और मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम लागू कर रहा है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। समुद्र मंथन मिशन के तहत ऑयल इंडिया ने अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज में दूसरी सफलता हासिल की है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस खोज से सीमांत बेसिन आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। ये नवीनतम खोज श्री विजयपुरम 3 खोजी कुएं में की गई है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर तथा 355 मीटर गहरे समुद्री जल क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि को भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने

के उद्देश्य से अपतटीय बेसिनों में बढ़ाए गए अन्वेषण प्रयासों की दिशा में एक और सकारात्मक विकास बताया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन मुफ्त, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ये अभियान हर महीने की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। इस सिलसिले में कल इस राष्ट्रव्यापी अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस वर्ष का विषय पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष, सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माताएं, मजबूत भारत है। इस अवसर पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्क्रीनिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे द्वीप समूह में विशेष आयुष्मान आरोग्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। भारत में पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने नीतिगत सुधारों और जन भागीदारी के जरिए वन क्षेत्र को बढ़ाने, नदियों को साफ करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान 2014 में नदियों के प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 524 परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिनमें से इस वर्ष फरवरी तक 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये मिशन वनों के विस्तार और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने पर केंद्रित है। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुँच गया है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन पर्यावरण आंदोलन में से एक बनकर उभरा है। पिछले साल दिसंबर तक इस अभियान के तहत कुल 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। वर्ष 2022 में शुरू किए गए मिशन लाइफ से जीवन शैली आधारित जलवायु कार्रवाई में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। कैंबल बे के गांधीनगर सामुदायिक भवन में कल ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाने, 500 मीटर जमीन के बजाय 1000 वर्ग मीटर जमीन और प्रभावित किसानों को विशेष पैकेज दिए जाने पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने का आग्रह किया है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस वर्ष 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नज़दीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उपकेंद्र में जमा किए जा सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप टीबी मुक्त

भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। ये अभियान तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक और लक्षित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसके मुख्य उद्देश्यों में कमजोर आबादी और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बीच चेस्ट एक्सरे और तत्काल नेट परीक्षण का उपयोग करके जांच के माध्यम से टीबी के सभी छूटे हुए मामलों की जल्द पहचान करना शामिल है। इस सिलसिले में कुल 672 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित कर लोगों की जांच की गई, जिसमें 86 टीबी के मामले मिले। शिविर के दौरान निक्षय मित्र के लिए कुल 7,210 पंजीकरण हुए। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेजों, संबद्ध मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और माई भारत की ओर से गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है और लोगों से निक्षय मित्र के रूप में आगे आने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार

0: है। इस सिलसिले में कुल 672 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित कर लोगों की जांच की गई, जिसमें 86 टीबी के मामले मिले। शिविर के दौरान निक्षय मित्र के लिए कुल 7,210 पंजीकरण हुए। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेजों, संबद्ध मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और माई भारत की ओर से गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है और लोगों से निक्षय मित्र के रूप में आगे आने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। समुद्र मंथन मिशन के तहत अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की दूसरी खोज के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के संबंध में उपराज्यपाल के कथन राष्ट्रीय सुरक्षा और पारिस्थितिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती है को भी प्रमुखता दी है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने NH4 में शक्तिगढ़ के नज़दीक कलवर्ट के टूटकर गिरने और यात्रियों को हुई परेशानी के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने द्वीप समूह में खेत बचाओ अभियान के आयोजन के समाचार को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने बाराटांग स्थित लोरोजिंग में पुल के डूबने से यातायात बाधित होने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समुद्र मंथन मिशन के तहत ऑयल इंडिया ने अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज में दूसरी सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की कल 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है और मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 KHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम देश रागिनी में। दोस्तों, विविधताओं का ताना बाना है हमारा ये देश, जहाँ भिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग आपस में मेलजोल के साथ रहते हैं। हमें इंडियन होने पे गर्व है। हाँ दोस्तों, हमें इश्क है हमारे इस वतन से।

गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी रूपी मंजिल को पाने के लक्ष्य में अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। खुद को फना कर देश के लिए कुछ कर गुजरने के इस जज्बे को सलाम करते हैं हम।

दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े होकर सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जब हम देश के नियमों का पालन करते हैं, जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हम अपने देश की सेवा करते हैं। इसलिए देश की सेवा करते रहिए और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार, रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी गीता। दोस्तों, रेडियो वो जादुई माध्यम है जिसने आवाज को पहचान दी, गीतों को घर घर तक पहुंचाया और दिलों को दिलों से जोड़ा और बना हमारी कल्पनाओं का आकाश। दोस्तों, वो भी दौर क्या दौर था जब शाम होते ही घरों की छतों पर एंटीना सीधा किया जाता था, जब आकाशवाणी की मधुर धुन सुनते ही पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता था। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो घर का सदस्य था, वो खबर था, वो गीत था, वो था साथी। रेडियो संग ऐसे ही कुछ अनमोल यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं हमारे ये श्रोता।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर जयसुंदर, निदेशक केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। रेडियो मुझे लगता है कि बचपन से हमारे साथ जुड़ा है। मैं जब बचपन में था तो मुझे याद है कि रेडियो में हमेशा गाने या तो बहुत सारे जो कार्यक्रम आते थे उनको मैं सुनते रहता था। और बचपन बड़ा स्कूल गया, उसके बाद भी रेडियो मुझे याद है। जब मैं कॉलेज में था, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, तब 100 या 150 रुपए का आता था, तो वो हम लोग लेके कॉलेज में सुनते थे, एक जगह रख देते थे। और मुझे ये भी याद है कि बचपन में जब खास तौर पे यहाँ पे जो समाचार आता है, पूरा दुनिया को एक तरह से एक मुट्ठी में, एक कमरे में कैद करके लाता है, वो बहुत ही आनंदपूर्ण क्षण होता था। साथ ही बहुत सारे जो रंगारंग कार्यक्रम है, हमेशा से बहुत सराहनीय रहा है। मुझे याद है मैं जब भी गाड़ी में होता हूँ, रेडियो मेरा हमेशा ही ऑन होगा, चाहे वो विविध भारती हो या फिर। मुझे ये भी याद है कि सुनामी के वक्त अर्थक्वेक जब आया था 2004 का, जो एक बहुत ही महात्रासदी आया था, उसके वक्त रेडियो ही एकमात्र संचार का माध्यम था। मैं आशा करता हूँ इसी तरह के जो रंगारंग जो कार्यक्रम है, हम सारे श्रोताओं तक पहुँचाते रहे। आकाशवाणी, नमस्कार, जय हिंद।
1: दोस्तों, जय सुंदर जी की ही तरह अनगिनत लोगों की खूबसूरत यादें जुड़ी है रेडियो से, जिन्हें याद करते ही हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां रेडियो बन जाता है हमारे पल पल का साथी और रहता है हमारे दिल के पास।

0: दोस्तों, रेडियो की आवाज़ जब पहली बार गूंजी थी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा ये माध्यम हर परीक्षा पर खरा उतरेगा। फिर वो चाहे समाचार हो, क्रिकेट कमेंट्री हो, सदाबहार गीत हो या विपत्ति का समय, रेडियो हर दौर का सच्चा साथी बना रहा। इस सच्चे साथी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है हमारी अगली श्रोता।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुनैना है, मैं एक शिक्षिका हूँ। मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। रेडियो से दिन की शुरुआत मन में नई उमंग और उत्साह भर देती है। मेरे जीवन में रेडियो का अलग ही स्थान है। रेडियो एक ऐसा साथी है जो जीवन में कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो। मुझे वो दौर याद है जब हमने सुनामी जैसी विपदा का सामना किया था। उस वक्त रेडियो ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जब सभी संचार के माध्यम ठप हो गए थे, रेडियो ही ऐसा माध्यम था जिसने सबको जोड़े रखा था। 90 वर्षों का अटूट विश्वास, आकाशवाणी है सबसे खास। आकाशवाणी हमें 90 वर्षों से अपनी निरंतर सेवा प्रदान करती आ रही है और मुझे उम्मीद है आगे भी हमें इसकी सेवा का भरपूर लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।
0: इस लंबे सफर में आकाशवाणी ने ठीक वैसे ही साथ निभाया जैसे हमारा कोई प्रिय साथी हमारे दिल का हाल जानते हुए भी हमारा साथ देता है।

0: रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
7: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
8: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
9: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
11: हाँ भाई, बोलने का ना।

0: कल के लिए।
1: समझ गया भाई, जरूरी है, क्योंकि सेहत बोले तो जिंदगी और सेहत बोले तो खुशहाली।
2: रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। 90 वर्षों की इस यात्रा में रेडियो ने न जाने कितनी कहानियां सुनाई, न जाने कितने सपनों को पंख दिए और न जाने कितने दिलों को जोड़ा। आज जब तकनीक ने नई ऊंचाइयां छू ली है, फिर भी रेडियो की सादगी और सच्चाई आज भी उतनी ही ताजा है, उतनी ही प्यारी है। इस यात्रा में एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सौगात के रूप में रेडियो रूपी दोस्त प्रदान किया। रेडियो ने अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों से जीता हर उम्र के लोगों का दिल, फिर वो चाहे बुजुर्ग हो,

0: बालक हो, गृहिणी हो या हो कामकाजी महिला, आइए अब सुनते हैं एक ऐसी ही कामकाजी महिला श्रीमती संगीता रवि की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: नमस्कार। सबसे पहले मैं आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं देती हूँ। औरों की तरह आकाशवाणी भी मेरे जीवन का हिस्सा है। हर रोज मेरी सुबह आकाशवाणी से शुरू होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रेडियो ऑन करती हूँ। मुझे ये आदत शायद मेरी माँ से मिली है। वह भी सुबह उठते ही रेडियो के प्रोग्राम सुना करती थी। मेरी माँ रेडियो फिल्मी गाने सुनती थी। मेरी दादी रेडियो में समाचार सुना करती थी। मेरी भी फिल्मी गानों के प्रोग्राम सुनने की आदत है। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम से हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है। 2004 में सुनामी में रेडियो ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमें रेडियो से हर रोज बहुत सारी जानकारी मिल जाती। हम साथ मिलकर रेडियो सुना करते। आकाशवाणी हमारे घर का एक हिस्सा है। आकाशवाणी को फिर एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: दोस्तों, उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, हम रेडियो के कार्यक्रम हमारा मनोरंजन करते ही हैं, साथ ही इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। रेडियो वो प्यारा सा दोस्त है जिसने हमें संगीत के जादू से संभाला और सुकून दिया। ऐसे ही हो गया हमें रेडियो से प्यार, क्योंकि इसके हर गीत के साथ जुड़ी रहती है किसी की याद, किसी की मुस्कान, किसी का इंतजार और प्यार।

0: दोस्तों, आकाशवाणी का सफर एक ऐसा सफर है जहां आवाज है लेकिन चेहरे नहीं, एहसास है लेकिन मुलाकात नहीं। यहां हर दिल की धड़कन जुड़ी है रेडियो रूपी यंत्र से। इस यंत्र संग अपने सफर को व्यक्त कर रहे हैं हमारे श्रोता प्रकाश यादव।
1: रेडियो का मेरे जीवन में बहुत अहम नाता रहा है, यह हमेशा से ही मेरा साथी रहा। चाहे कैसी भी हो आपदा, ये कभी खामोश नहीं रहा। इसने

0: हमेशा से ही हमारा साथ दिया। आजकल के इस डिजिटल दुनिया में रेडियो ने अपना नया स्थान ऐप के माध्यम से बना लिया है। अब हम न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से इसे कहीं भी सुन सकते हैं। रेडियो मैं बचपन से ही सुनते आया हूँ। इसके सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं, खास करके फरमाइशी फिल्मी गीत। रेडियो हर एक वर्ग को जोड़ता है और सबों को समेट कर चलता है। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।
1: दोस्तों, वक्त बदला, तकनीक बदली, ट्रांजिस्टर से एफएम तक का सफर तय हुआ, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, वो है आवाज की ताकत। रेडियो की इसी ताकत ने इतने लंबे सफर को आसानी से तय किया और हम भी चल दिए रेडियो संग इस सफर में गुनगुनाते हुए।

0: 90 वर्षों की इस सुनहरी यात्रा को आइए करें नमन, उस हर आवाज को दे धन्यवाद जिसने माइक्रोफोन के पीछे बैठकर हमारे दिलों तक अपनी बात पहुंचाई। दोस्तों, रेडियो सिर्फ आवाज नहीं है, रेडियो एहसास है, यादों का खाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। यही है 90 वर्षों की वो कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक दिल धड़कते रहेंगे रेडियो की आवाज गूंजती रहेगी। अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार।
1: रेडियो रागिनी, 90 वर्षों की कहानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया

0: जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में

0: उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICA

आर के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट

0: फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल, गुलाम अली, चंदन दास और मनहर उदास की गाई चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लोफर फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, स्वर लता मंगेशकर का, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत था संगम फिल्म से। बोल हसरत जयपुरी के धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा एवं रवि का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए धर्मवीर फिल्म का ये गीत। स्वर दिया मोहम्मद रफी ने, गीत रचना आनंद बख्शी की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए धर्मवीर फिल्म का ये गीत। स्वर दिया मोहम्मद रफी ने, गीत रचना आनंद बख्शी की।

सफर। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा इंदिवर ने, संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म दाग से।
1: मेरे दिल में
0: गीतकार हैं साहिर तथा संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

साहिर का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था दाग फिल्म से। स्वर किशोर कुमार का था। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत, इस कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित मानस चक्रवर्ती का गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर समीर साहा ने, हारमोनियम पर रंजन मुखोपाध्याय ने और तानपुरे पर पार्थशास्त्री मजुमदार, रुचिरा पांडा और सुभाशीष मुखर्जी ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए पंडित मानस चक्रवर्ती का गाया राग वृंदावनी सारंग। पर पहले ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बंधन से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में इस गीत को लिखा भैरव अरुण ने और संगीत से सजाया आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म फंटोश से। आवाज़ है किशोर कुमार की और साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया SD बर्मन ने।

श्रोताओं आप लीजिए सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का एक गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब प्रस्तुत है मनवेंद्र की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया अभिषेक रे ने। फिल्म है आयाम कलाम और आवाज के की है।

दुल्हन बनू मैं तेरी। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए इस फिल्म का एक गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर, उदित नारायण, विनोद राठौड़ और साथियों की। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा देव कोहली ने।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए सुनिए ये गीत।
1: Life is so beautiful.

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, तकनीकी कारणों से प्रातः 10:36 से लेकर 10:48 तक हमारा कार्यक्रम बाधित रहा। श्रोताओं को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमको इश्क ने मारा फिल्म का एक गीत। आवाज थी मनोहर शेट्टी और प्रीता मजुमदार की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था आदेश श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए मौसम फिल्म से। आवाज है शाहिद मालिया की। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया प्रीतम ने।

0: शाहिद माल्या के गाय फिल्म मौसम के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है।
1: विविध भारती मन भावन अभिजात संगीत की

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT
1: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।

0: समुद्र मंथन मिशन के तहत ऑयल इंडिया अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज में दूसरी सफलता हासिल की है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस खोज से सीमांत बेसिन आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। उन्होंने इसे भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और सकारात्मक विकास बताया।
1: सही समझा आपने।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है।
1: वाह, बहुत ही सुंदर विचार, धन्यवाद संतोष खड़से जी, इसी तरह से हमें प्रेरित करते रहिए।
2: सच बात यह है श्रोताओं कि यदि समस्याओं को ही सोचते रहेंगे तो और भी समस्याएं दिखाई पड़ेंगी।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन यदि संभावनाओं के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं भी दिखाई पड़ने लगेंगी।
1: ये है सकारात्मक जीवन जीने का तरीका।
2: बिल्कुल।
1: तो अब प्रस्तुत हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
1: इच्छापुर ओडिशा से देशदीप दास जी ने।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी।
1: मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी ने।
2: वाराणसी से जेम्स पांडे ने।
1: रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले आनंद और प्रीति दुबे।
2: और हैदरगढ़ जिला बाराबंकी से राहुल कुमार।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश भेजते रहिए,
2: संपर्क बनाए रखिए। तो विमलेश जी, अब पूछा जाए आज का सवाल।
1: जी जरूर, आज का प्रश्न है किस महादेश में सबसे अधिक देश हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: जी, आज का प्रश्न है किस महादेश में सबसे अधिक देश हैं?
1: आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं 8800440559 पर।
2: और श्रोताओं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए झटपट। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: जी श्रोताओं, जैसा कि हमें पता है गर्मी का मौसम है।
2: जी,
1: भीषण गर्मी पड़ रही है। अपना और अपने प्रिय मित्रों और अपने प्रियजनों का बहुत ख्याल रखिए।
2: तो ख्याल कैसे रखें मित्रों? तो सबसे पहली बात कि खाली पेट घर से ना निकले।
1: और हाँ, नंगे पांव भरी दोपहरी में बाहर ना निकले, विशेषकर 12 बजे से 3 बजे की।
2: जी हाँ श्रोताओ, और आपको एक और बात बता दें, वो ये है कि सन 2024 इस शताब्दी के सबसे गर्म वर्षों में शामिल किया गया है।
1: जी।
2: और ऐसा हो रहा है
1: जलवायु परिवर्तन के कारण। तो साथियों, अभी भी अवसर है। क्या आपको पता है कि
2: बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं,
1: और जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने लगाए नहीं जाते। तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारा संदेश है कि अभी भी अवसर है पेड़ लगाने का और पानी बचाने का
2: और पर्यावरण बचाने का। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक बेहद प्रेरक यूनानी लोक कथा।

0: था जो बड़ी सुंदरता से चित्रण करती है अवसर का।
1: जी
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम अवसर को पहचाने।
1: नमस्कार साथियों।
2: नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस श्रृंखला में हर बार आपके लिए रोचक कहानियों और घटनाओं को लेकर आते हैं
1: और साथ ही आपको जानकारी भी देते हैं दुनिया के भिन्न भिन्न देशों की। आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
2: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
1: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
2: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
2: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
3: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ऐसी मूर्ति तो मैंने
7: वाओ वंडरफुल।
2: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
2: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
2: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
4: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
5: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
2: उस मूर्तिकार ने बताया,
8: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
3: ग्रेट, मार्वेलस।
5: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
3: वंडरफुल।
9: हाँ, हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?

0: कलाकार ने बताया।
1: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
2: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
2: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने, और अब सुनते हैं एक और हास्य प्रधान कार्यक्रम। शीर्षक है
3: दान का हिसाब। लेकिन श्रोताओं, क्यों है ये कार्यक्रम हास्य प्रधान? इसके लिए आपको ये कार्यक्रम सुनना पड़ेगा।
4: तो सुनिए और आनंद लीजिए। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि कृपया एक फोन करके अवश्य बताएं कि उमंग कार्यक्रम आपको कैसा लगता है।
3: तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8800-440-559।
5: एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले,
6: यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है।
5: लोगों ने कहा,
7: महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके।
5: राजा ने कहा,
6: आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद में ही दिवालिया न हो जाऊंगा।
5: यह सुनकर सभी निराश

0: वो घर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई।
1: दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे।
0: राजा ने कहा,
2: 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है?
0: एक व्यक्ति ने कहा।

0: लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई।
1: दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे।
0: राजा ने कहा,
2: 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है?
1: हैं?
0: एक व्यक्ति ने कहा,
1: भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा?
0: राजा ने कहा,
2: राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं?
0: एक अन्य व्यक्ति ने कहा,
1: महाराज, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी।
0: यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला,
2: खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, हैं? मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ।
0: राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला,
2: छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती हो। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है।
0: यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए।
3: ठीक है महाराज, जैसा आप कहें।
0: मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा,
4: दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें?
0: अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला,
2: जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, हैं? यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए।
0: सन्यासी ने कहा,
4: मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना ले।

0: देता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है।
1: राजा बोला,
2: तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी।
1: सन्यासी ने हंसते हुए कहा,
0: महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।
1: यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए।
3: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
1: राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है।
4: पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये।
1: यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा,
5: वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता।
1: इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला,
5: यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है
6: जी,
5: तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे?
1: भंडारी बोला,
6: जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है।
1: मंत्री ने कहा,
5: तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो।
6: है जी।
1: भंडारी हिसाब करने बैठ गया।
4: पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये।
1: मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा,
5: कुल मिलाकर कितना हुआ?
1: भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा,
6: जी 10,48,575 रुपए।
1: मंत्री गुस्से में बोला,
5: मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा।
1: भंडारी ने कहा,

0: मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए।
1: यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा,
2: क्या बात है?
1: मंत्री बोले,
3: महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है।
1: राजा ने पूछा,
2: वो कैसे?
1: मंत्री बोले,
3: महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है।
1: राजा ने गुस्से से कहा,
2: मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, हैं? फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ।
1: मंत्री ने कहा,
3: जी महाराज सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए।
1: राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया।
4: तीसरे दिन 4 रुपए, 17वां दिन 65,536 रुपए, 20वां दिन 5,24,000 रुपए।

0: काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला,
1: दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा?
0: सन्यासी ने गंभीर होकर कहा,
2: इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है।
0: राजा ने कहा,
1: परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे।
0: सन्यासी ने कहा,
2: मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा।
0: राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा,
3: हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है।
0: हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है।
4: तो अब इसके साथ हमारे

0: आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है।
1: तो अब कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: सौम्या,
2: मयंक
1: और विकास के साथ अजीत और
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। आज के अंक में हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत जगत के ऐसे संगीतकार की जिन्होंने अपने आधुनिक संगीत सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स ध्वनियों के प्रयोग से 90 के दशक के बॉलीवुड संगीत को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीत निर्देशक विजू शाह की। तो आइए उनके संगीत सफर का आनंद लेते हैं।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें

श्रोताओं, विजू शाह का जन्म 5 जून 1959 में हुआ। वे प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी के पुत्र हैं। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर अपने अनोखे संगीत के बल पर हिंदी फिल्म उद्योग में विशेष पहचान बनाई। उन्हें सिंथ साउंड्स का बादशाह भी कहते हैं।

श्रोताओं, भारतीय और पश्चिमी संगीत के सुंदर मेल से विजू शाह ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नया रंग दिया। उनके गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं और नई पीढ़ी को आज भी उतने ही पसंद आते हैं।

श्रोतों, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजू शाह के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ बेहतरीन गीत। समय बता दें आपको, इस समय दिन के 11:53 हुए हैं।

श्रोताओं, बिरजू शाह ने संगीत प्रेमियों की पसंद को आगे रखकर हर एक धुन बहुत ही खास बनाई है। इनके बनाए गए धुन कुछ ऐसे हैं जो संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दें।

इसी के साथ ही एक ही कलाकार का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: వచ్చావా?
1: కావుడో
0: మట్టి వచ్చారో మోగిస్తా పంబలు.

जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 430

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की केवाईसी निलंबित कर दी है और सिम कार्ड

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ,
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल।

0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग।
1: हाँ,
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ,
0: किसने लिखा है मालूम है? दुड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दुड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ, तैयार हैं।
0: इस गाना का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
2: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ?
0: हाडु तिहवु हारु तिहवु
2: हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
2: कडल करेय खगकुला यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
2: उद्द अगला
0: जी
2: की दानी तू
0: बांदला
2: बांदला।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
2: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
2: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिखिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिखिया?
2: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
2: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बजे
2: व्योम कानुआ बजे
0: हसीव मरेसी
2: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
2: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
2: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिख लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ,
0: याव नाडो यंथ काडो
2: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
2: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
2: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
2: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ?
1: हाँ।
0: को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताइए।

अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नले। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना।

दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए अभी आप सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी की श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9474।

2340000 इस नंबर पर। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। मैसेज करते वक्त अपना नाम, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ओम शांति ओम से। पसंद करने वाले श्रोता हैं लखनऊ से प्रेम और सौरव।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी, फिल्म का एक गीत। और इस गाने की फरमाइश हमें आई है मीठा खाड़ी श्री विजयपुरम से, अशरफ और सलमा का।

श्रोताओं, अगला गीत पूर्णिमा की पसंद पर फरमाइश आई है भातुबस्ती श्री विजयपुरम से। इन्होंने दोस्ती फिल्म के इस गीत के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम के आखिर में लीजिए सुनिए। प्रेमनगर श्री विजयपुरम से नेहा कृष, दीक्षांत और वनीता की पसंद पर वजह तुम हो फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं 9474234000। इस नंबर पर नंबर एक बार फिर सुन लें 9474234000। और इसी के साथ हम कार्यक्रम से लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर की 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
3: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
4: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
5: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
6: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
7: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे

0: संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में

0: भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं।

हैं, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। मछुआरों को 11 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: श्रोताओं, दोस्ती वो एहसास है जो दूरियों में भी पास का एहसास दिलाता है, हर खुशी और हर गम में दिल के साथ रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपना पसंदीदा फोन आउट कार्यक्रम, जहां बातें होंगी दिल से दिल तक, गीतों की मिठास होगी और श्रोताओं का प्यार होगा हमारे साथ। तो तैयार हो जाइए कुछ खास पलों, रोचक बातचीत और बेहतरीन गीतों के सफर के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त श्रीविद्या और अगले कुछ समय तक रहूंगी आपके साथ। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड में। श्रोताओं, देर न करते हुए आइए जुड़ते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, हमारी बात हो रही है मोनिका जी से।
1: जी मैडम।
0: जी मोनिका जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैडम।
0: जी मोनिका जी, बताइए सबसे पहले कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: मन मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं, तो सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना। कुछ बताइए अपने बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: मैं घर में ही हूँ।
0: अच्छा, तो आपके घर पे कौन कौन है?
1: मेरे दो बच्चे हैं,
0: जी तो
1: हस्बैंड है,
0: अच्छा,
1: हाथी।
0: तो बच्चों की छुट्टियां चल रही होंगी?
1: बच्चों का पढ़ाई हो गया,
0: अच्छा पढ़ाई हो गया। अच्छा, तो अभी
1: कॉलेज
0: आप
1: कर रहे हैं।
0: क्या करने का सोचा है, आप क्या करते हैं अभी?
1: मैं तो घर पे ही हूँ।
0: जी, तो सुनवा रहे हैं मोनिका जी आपकी पसंद का।
1: दोस्तों के नाम,
0: दोस्तों का नाम लेना चाहती हैं, ले लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप है
0: जी।
1: आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ, मेरी भांजी दीपल है, दीपक दर्शन बुद्धि मैडम, और शादीपुर से सप्तम कुंड दीदी है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, इंदलियन से शिप्रा है, बमसर से जया दीदी है, दक्षिण
0: जी
1: मंगल से गणेश दास जी है, नैनीचंद जी है, राकेश जी है, माही दास जी है, बसंती लाल जी है, और दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और त्रिपुरा से संगीता दीदी है, और आशुतोष भैया जी है।
0: तो सुनिए, आनंद लीजिए मन मूवी का ये गीत अपने सभी दोस्तों के साथ।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्ते।
0: नमस्ते। हमारी बात हो रही है सतीश कुमार जी से।
1: जी, हाँ, सतीश कुमार से बात हो रही है। मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से।
0: जी सतीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप
1: मैं तो खेती बाड़ी करके आऊँ।
0: जी? तो बताइए सतीश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज ये दिल फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। वो प्रिया प्रिया, आपके इधर श्री विजयपुर का मौसम कैसा है? और आज आकाशवाणी के 90 वर्ष, आज के दिन आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे कर लेगी तो।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने पूछा मौसम का हाल, यहाँ की बात कही तो बहुत दिनों बाद हमें आज धूप नजर आई है। और आप बताइए, आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: मेरे बहुत गर्मी पड़ रही है। मेरे 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है, तापमान आपका।
0: तो और ये गीत किन के साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: ये जितने तमाम सुनने वाले सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ। आकाशवाणी तो बहुत कुछ सिखाती है, जैसे आकाशवाणी समाचार वगैरह है, जैसे मनोरंजन विज्ञान वर्ग है। तो आकाशवाणी के आज तो

0: परसों जाएंगे तो 1.5 वर्ष कम नहीं देना चाहता हूँ। और गर्मी के मौसम में टिप्स बताना चाहता हूँ, जैसे अभी तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी में जैसे खीरा ककड़ी तरबूज और ये चीजें इनका सेवन करना चाहिए। हरे भरते वाली सब्जियाँ खाना चाहिए और ज्यादा पानी पीना चाहिए, और उसके बाद प्लेट और कच्ची अच्छी तो उनको भी पानी रखना चाहिए
1: जी
0: कहीं
1: सती जी,
0: घरे।
1: आपके पास तो जानकारियों का खजाना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें हुई, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड मैडम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ।
0: जी अभिषेक जी, आप शहीद द्वीप से बोल रहे हैं।
1: जी मैडम, हमारा छोटा सा टापू है।
0: जी कैसे हैं आप अभिषेक जी?
1: बस मैडम बढ़िया है, थोड़ा बारिश कम हुआ है अभी।
0: जी जी तो आप बहुत ही सुंदर द्वीप में रहते हैं, बताइए इन दिनों आप क्या कर रहे हैं आप?
1: जी मैडम, अपना तो काम वही है, सब गेस्ट को घुमाना।
0: जी तो अभी सीजन ऑफ है या ऑन है? शायद ऑफ है,
1: ऑफ है पर कम है मैडम, जिसका है पर कम है।
0: काम कम है पर चल रहा है काम आपका?
1: जी जी जी मैडम, काम चल रहा है।
0: अच्छा लगा
1: काम
0: आपसे बात
1: चलता
0: हुई,
1: रहता है,
0: मेहनत करते रहिए।
1: रेडियो में गाड़ी में रेडियो चलते रहता
0: गाड़ी
1: है।
0: में रेडियो सुनते हैं आप?
1: गेस्ट लोग आके बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे अभिषेक जी इतना पुराना गाने आपके पास कलेक्शन कहाँ से है, फिर चला है।
0: अच्छा
1: मैं भी
0: अच्छा
1: बोलता हूँ मैडम हमें तो रेडियो चलता था मैडम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी जी जी जी
0: तो
1: स्वागत
0: अब
1: करते हैं मैडम।
0: अपने मतलब टूरिस्ट जो आते हैं, मेहमान यहाँ पे आते हैं, उनको भी सुनवाते हैं रेडियो?
1: जी जी राइट राइट, और सबको एनकरेज करता हूँ कि रेडियो सुनना चाहिए, घर में भी रेडियो चलना चाहिए, एक
0: जी
1: पैकेज है, नॉलेज मिल जाता है। जी
0: ठीक है। अभिषेक जी बताइए
1: मैडम,
0: कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: एक बहुत ही फेमस गाना है, किशोर कुमार है जो इतने महान संगीतकार है, तो उनका एक गाना है कि चिंगारी कोई भर के प्रेम
0: जी
1: कुछ,
0: अमर
1: वो
0: अमर
1: गाना
0: प्रेम
1: चला
0: फिल्म का
1: मैडम,
0: गीत है किशोर कुमार की
1: अमर प्रेम
0: आवाज़
1: का गाना
0: में।
1: है मैडम।
0: जी जी बहुत ही
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: गाना
1: और
0: है।
1: मैडम एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरा विशेष को, मेरा फ्रेंड है अकील सोनी, सबको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: तो आप अपने अपनी वाइफ का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मेरा वाइफ है सपना सरकार है मैडम, और बेटी का नाम है महिमा सरकार। तो
0: जी तो उम्मीद करते हैं सपना जी और महिमा जी भी इस वक्त हमारा कार्यक्रम सुन रही होंगी।
1: जी, वो लोग तो मैडम अभी नहीं सुन रहे, वो लोग अभी बस में है, डिग्रीपुर से आ रही है नील में।
0: अच्छा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: सुनिए
1: जी
0: अभिषेक जी आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, मुकेश जी से बात हो रही है हमारी।
1: जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ आपसे। फिल्म
0: मुकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको? बिल्कुल
1: का नाम है हीना, गाने के बोल हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
0: जी, ज़रूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी
0: और बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? घर पे कौन कौन है?
1: घर पे हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारी वाइफ भी है।
0: जी, तो क्या घर में सभी को आपकी तरह रेडियो सुनने का शौक है?
1: जी मैम, मेरे पापा को मैं इतना शौक है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था मेरे पापा तब से रेडियो सुनते हैं सर।
0: अच्छा,
1: जी मैम
0: तो उनके ज़माने के प्रोग्राम्स के बारे में भी बताते होंगे ना?
1: जी, वो बताते हैं कि बहुत बहुत पुराने प्रोग्राम आते थे पहले, बहुत अच्छे अच्छे लगते थे, और अब के जमाने में तो रेडियो इतने छोटे हो गए ताकि हम जेब में रख के घूमते रहते हैं हर समय।
0: जी, तो इस प्रोग्राम के अलावा कौन सा प्रोग्राम आप पसंद करते हैं?

0: मैम कृषि जगत के प्रोग्राम भी अच्छा लगता है मैम,
1: अच्छा शाम
0: खेती
1: के
0: बाड़ी
1: समय
0: के
1: आप
0: बारे में
1: सुनते हैं।
0: जानकारी मिल जाती है। जी
1: जी
0: मैम,
1: जी वैसे करते क्या हैं आप, खेती का
0: मैम मैं
1: काम?
0: गाड़ी भी चलाता हूँ मैम, और हमारी खेती बाड़ी भी है मैम।
1: बहुत बढ़िया।
0: कुछ ही दिनों के बाद धान की लगाई करेंगे मैम।
1: जी, तो
0: जी
1: अभी मौसम कैसा है वहाँ का?
0: मैम, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मैम, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है।
1: जी, कैसे इस टाइम कैसे रहते हैं आप, पानी की दिक्कत होती है?
0: मैम हम अपनी जब गाड़ी लेकर जाते हैं ना, तो अपने 10-11 बजे अपने घर आ जाते हैं मैम।
1: तो अच्छा, 10-11 बजे तक काम ख़त्म करके घर आ जाते हैं आप?
0: जी,
1: अच्छा, फिर शाम के समय फिर से जाना होता है।
0: मैम आपके बात कट रही है मैम।
1: आवाज़ कट रही है तो ठीक है। मुकेश जी, अभी आपको सुनवा रहे हैं, आपको आपकी पसंद का गीत फिल्म है ना?
0: ठीक है मैम, ओके।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो, जी हमारी बात हो रही है सिद्धार्थ जी से?
5: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते जी सिद्धार्थ जी, बताइए आप कहाँ रहते हैं?
5: मैं रहता हूँ ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से।
4: जी, आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
5: आज मुझे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत है, आए हो मेरी जिंदगी बाहर बनके।
4: जी, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। सिद्धार्थ जी, शायद बहुत दिनों बाद हमसे जुड़ रहे हैं आप, है ना?
5: बिल्कुल, लगभग वर्ष हो चुका है।
4: जी, क्या कर रहे थे इन दिनों आप?
5: बिल्कुल कुछ काम में थे, लेकिन प्रसारण सुनते थे हमेशा।
4: जी,
5: बाकी सारी श्रोताओं की फरमाइश हम प्रोग्राम में सुनते रहते हमें।
4: आप अपने लाइफ में बहुत व्यस्त थे।
5: बिल्कुल, सोशल वर्कर हूँ और साथ में मेरी प्राइवेट जॉब भी चलता है।
4: बहुत अच्छा लगा, आप समाज सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है।
5: लगभग 25 वर्षों से रेडियो के प्रसारण सुनते आ रहा हूँ, देश भर के सभी केंद्रों पर मेरी ईमेल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और सभी पत्रों के माध्यम से फरमाइश रहती है।
4: जी, दिन में कौन सा समय होता है जो आप सुनते हैं रेडियो इस प्रोग्राम के अलावा?
5: इस प्रोग्राम के अलावा FM गोल्ड सुनते हैं, रेनबो सुनते हैं और साथ में कानपुर सुनते हैं और बहुत सारे केंद्र रहते हैं, रामपुर केंद्र है।
4: जी, तो आपके बारे में अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि आप एक शुद्ध रेडियो प्रेमी हैं।
5: बिल्कुल, देश भर के अभी तक जितने भी श्रोता सम्मेलन हुए हैं,
4: जी,
5: तो देश भर के सभी अलग अलग स्टेट में आया हूँ और सभी कार्यक्रम में मेरा सम्मान और मुझे अवार्ड भी मिल चुके हैं आकाशवाणी की तरफ से।
4: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें हुई। तो बताइए सिद्धार्थ जी, आपने बता दिया आपने गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपने चुना है आज, आई हो मेरी जिंदगी में,
5: तुम
4: गीत की बोल हैं जी, तो किन के साथ सुनना चाहते हैं आप?
5: ये मेरे मित्र से अर्चना ने
4: जी,
5: मेरी लड़की है, प्रसिद्धि लड़का फ्रेंड है, साथ में है शेंडे है, रामन किराड़े है और सभी साथियों को सुनिएगा।
4: तो सुनिए सिद्धार्थ जी, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ।
5: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। हमारी बात हो रही है पूर्णिमा जी से।
1: जी, स्कूल लाइन से पूर्णिमा बोल रही हूँ।
0: जी पूर्णिमा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आप जुड़ रही हैं हमसे,
1: लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया मुझे कॉल आया है।
0: तो इसका मतलब है सबको बराबर मौका मिल रहा है मतलब।
1: बीच में आया था एक बार कॉल कि मुझे शामिल किया जाएगा,
0: जी
1: पर
0: जी
1: शायद समय की कमी की वजह से मुझे नहीं सम्मिलित किया गया प्रोग्राम में।
0: हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समय की कमी हो जाती है या फिर और कुछ कारण से।
1: कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं ना।
0: तो कोशिश करते हैं कि अगले जब प्रोग्राम रहेगा, जो प्रोग्राम जब भी रहेगा उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। तो बताइए पूर्णिमा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैं बिल्कुल। आप लोग सब कैसे? आकाशवाणी परिवार।
0: हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: मूवी का नाम है इश्क और उसका टाइटल सॉन्ग सुनना है, जब नींद ना आए।
0: जी, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। और
1: कुछ
0: इस वक्त क्या कर रही थी आप?
1: बस आपका प्रोग्राम सुन रही थी। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष भी पूरे हो गए, सबको बधाई।

0: और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको।
1: मूवी का नाम है इश्क और उसका टाइटल सॉन्ग सुनना है, जब नींद ना आए।
0: जी, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। और
1: बस
0: इस वक्त क्या कर रही थी आप?
1: आपका प्रोग्राम सुन रही थी। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष भी पूरे हो गए, सबको बधाई।
0: धन्यवाद आपको
1: और
0: भी।
1: कुछ
0: तो
1: दोस्तों के नाम ले लो जल्दी से।
0: जी जरूर,
1: मैं
0: जी जरूर।
1: मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार जी, केसरी सिंह राजपूत जी, रमेश प्रजापति, और राजस्थान से पूरण वर्मा, दिल्ली से धर्मवीर जी,
0: जी
1: और शिमला से हैं राकेश जी, कोल्डी जी, और यहाँ विजयपुरम से शैतान खाड़ी से मोनिका जी, और विमरलीगंज से चिपरा जी, और जितने नेटवर्क के श्रोता सुन रहे हैं सभी के साथ सुनना चाहूंगी।
0: जी पूर्णिमा जी, आप अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए, और उम्मीद करते हैं इस वक्त आपके सभी दोस्त सुन रहे होंगे ये प्रोग्राम।
1: जी,
0: तो सुनवा रहे हैं आपकी
1: उसका तो
0: पसंद का
1: कॉल भी
0: इश्क
1: आ
0: फिल्म का ये
1: गया
0: गीत।
1: है।
0: जी कुछ,
1: कुछ दोस्त जो
0: अच्छा, आप
1: सुन
0: और
1: रहे
0: कुछ
1: हैं उनका
0: मित्रों
1: कॉल
0: के,
1: भी
0: अच्छा,
1: जा
0: कॉल
1: चुका
0: जा
1: है।
0: चुका है, आप सुन रहे हैं रेडियो।
1: मोनिका जी हैं,
0: अच्छा
1: उनको
0: अच्छा
1: कॉल पहला कॉल गया था।
0: जी जी तो सुनिए,
1: बहुत बहुत
0: आनंद लीजिए
1: धन्यवाद
0: फिल्म
1: सर,
0: इश्क का ये गीत।
1: कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो मैम
0: जी, हमारी बात हो रही है सिप्पी घाट की सुमी जी से।
1: पहचाना आपने।
0: जी सुमी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको।
1: मैंने प्यार किया मूवी का दिल दीवाना बिन सपना के माने ना, ये गाना सुना दीजिए मैडम। जो कि 6 जून को हमारा वेडिंग एनिवर्सरी था, तो ये गाना मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: जी, तो आप अपना हस्बैंड का नाम लेना चाहेंगी।
1: जी, मेरे हस्बैंड का नाम है बेनेडिक्ट।
0: जी, तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद मैडम।
0: हाँ, तो बताइए क्या करती हैं आप सुमी जी।
1: मैडम मैं टीचर हूँ।
0: अच्छा, तो अभी छुट्टियां चल रही हैं
1: अभी तो
0: आपकी,
1: छुट्टियां चल रही हूँ।
0: क्या किया छुट्टियों में? अभी तो वापस से स्कूल खुलने का टाइम हो गया है।
1: जी छुट्टियों में तो फिलहाल कुछ नहीं किया। अभी हम यहाँ यहीं पर है, मेले नहीं गए इस बार।
0: तो यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना हुआ?
1: यहाँ मैं भी घर में ही हूँ मैडम। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं गए, घर का काम चल रहा है हमारा, तो कहीं
0: जी,
1: नहीं गए।
0: कभी कभी बहुत सारा बहुत ज़्यादा काम करने के बाद घर पे रहना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, लास्ट वेकेशन में भी हम गए थे घूमने, बट इस बार नहीं जा रहे।
0: तो घर पे कौन कौन है?
1: घर में हम लोग जॉइंट फैमिली में है मैडम। हमारे हस्बैंड के 3 भाई हैं, हम सभी मिलकर रहते हैं।
0: जी, तो ठीक है सुमी जी, समय की कमी है, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद मैडम।

0: दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है। मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है, दोस्ती का रिश्ता हर पल दिल के करीब है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम से दीजिए श्री विद्या को इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ श्रीविद्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। आज 8 जून विश्व महासागर दिवस के अवसर पर हम लेकर आए हैं सागर से जुड़े कुछ सदाबहार गीत। विश्व महासागर दिवस हमें महासागरों की उस महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है जो जीवन को बनाए रखने, जलवायु को नियंत्रित करने और हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन के उत्पादन से निभाते हैं। इसी भावना के साथ सुनते हैं पहला गीत।

ha, ha, ha.

सागर और समुद्र की विशालता को महसूस कराता ये गीत हमेशा दिल को छू जाता है। श्रोताओं, वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महासागर दिवस की थीम रखी है, पुनर्कल्पना, हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। ये विषय मानवता को महासागरों के लिए उपयोग करता नहीं, बल्कि उनके सक्रिय संरक्षक बनने का संदेश देता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विश्व महासागर दिवस विशेष। विश्व महासागर दिवस नेटवर्क ने वर्ष 2026 के लिए विषय चुना है, हमारे नीले ग्रह के लिए मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सागर और किनारों की खूबसूरती को बयां करता हुआ कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे है, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला मिंजी रोखरे हमांग इंजे तका इनगम मीडियम वे 438.6 मीटर हिगिंगम 684 किलोहर्ट्स लिखतिहांग इन रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप अनुराधा पौडवाल की आवाज में कुछ गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुन सकेंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप वैज्ञानिक डॉक्टर जय सुंदर से की गई बातचीत सुनेंगे। मानसूनी बारिश से पहले में आर्थिक उपाय। पॉप मसाला फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आप आनंद ले पाएंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में विश्व महासागर दिवस पर चर्चा और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनेंगे। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे अमरुद में अधिक उपज कैसे विषय पर जानकारी। 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा निगाह शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुनेंगे। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आप सुनेंगे देशरागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप खेल

कार्यक्रम सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे उस्ताद सईद साबरी और फरीद साबरी। सुबह 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप षणमुख प्रिया और हरि प्रिया को सुनेंगे। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का आप आनंद ले सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रगीत। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे विज्ञान कार्यक्रम व सुगम संगीत सुनवाया जाएगा। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे चंदन दास। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप लपाती गांव के मैरी सैमुअल के गाए गीत सुनेंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनुराधा और जसवंत सिंह। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगालीर ओलगम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप लोकगीत सुनेंगे। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान विषय पर कृषि विभाग के निदेशक श्री देवव्रत बसंतिया से की गई बातचीत आप सुनेंगे। शाम में बाहर फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा। दिल ने फिर याद किया का आप आनंद ले पाएंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर के गाए फिल्म दीवाना सनम के गीत के साथ। फैज अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मिलिंद सागर ने।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अभिजीत की मिली जुली आवाज़ों में फिल्म सनम हर जाए का ये गाना। सावन कुमार के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है उषा खन्ना ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणकम तमिल अमुदम वणकम निर्गली

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बंगला कार्यक्रम।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रागिनी। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, एक अच्छी फसल के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन बीज की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही हमारे दिन को खास और सफल बनाने के लिए एक अच्छे विचार की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहद अनमोल और सुंदर विचार से करते हैं। विचार है, कमज़ोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमज़ोर हौसले के साथ नहीं। दुनिया में सबसे अमीर शख्स वो है जो अपनी एक मुस्कान भर से ही दूसरों का दिल जीत लेता है। श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसमें फल तभी लगता है जब वो मिट्टी से जुड़ा होता है। सत्य बोलोगे तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। किस्मत आप साथ लेकर आते हो और कर्म आप साथ लेकर जाते हो, यही जिंदगी है। अगर हारने के बाद भी कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। किसान साथियों, हौसलों का बुलंद होना और कर्म का सही होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंसानी गतिविधियों के कारण समुद्र लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। लोगों को इनके नुकसान के प्रति सचेत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अत्यधिक और अवैध शिकार के कारण समुद्र की 90% बड़ी मछलियों की आबादी कम हो चुकी है। उन्हें विलुप्त होने से बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। महासागरों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि समुद्र को बचाना किसी और पर एहसान नहीं बल्कि मानव जाति के अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जरूरत है। विश्व महासागर दिवस का महत्व हमें यह बताता है कि हमें सांस लेने के लिए

0: आवश्यक 50% से अधिक ऑक्सीजन समुद्र के छोटे पौधों से मिलती है। महासागर दुनिया की 90% से अधिक अतिरिक्त गर्मी और 30% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं। हर साल 1 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता है। यह दिन हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की याद दिलाता है। दुनिया भर के अरबों लोगों का रोजगार और भोजन सीधे तौर पर समुद्र से जुड़ा है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख मुख्य कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाने वाला यह विश्व महासागर दिवस हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि पृथ्वी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे द्वीप से प्रतीत होंगे। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। हर साल विश्व महासागर दिवस पर पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विषयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जो महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करता है। आज 8 जून को सिर्फ एक तारीख मत समझिए, यह एक वादा है खुद से और इस नीले ग्रह से। जब तक हम प्लास्टिक को ना नहीं कहेंगे तब तक समुद्र मुस्कुरा नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र सुरक्षित है तभी हमारा कल सुरक्षित है। धरती पर जीवन की शुरुआत समंदर से हुई थी और अगर समंदर खत्म हुआ तो जीवन का अंत भी वही होगा। प्रकृति को कूड़ेदान मत बनाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं आज का प्रश्न। लोबिया किस तरह की फसल है? इसमें विकल्प भी बताए गए हैं। पहला चारे वाली, दूसरा सब्जी की, तीसरा दाल की, चौथा हरी खाद की या पांचवा इनमें से सभी। किसान साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप सोचते रहिए, हम इसका सही उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डालें।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: जी हाँ किसान साथियों, मानसून की पहली फुहार जितनी हमारे खेतों के लिए वरदान लाती है उतने ही थोड़ी सी लापरवाही हमारे पशुओं के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। अगर पशु बीमार हुए तो दवाइयों का खर्च बढ़ता है और दूध का उत्पादन कम होता है जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। इसलिए आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हमारा मुख्य विषय यही है कि मानसूनी बारिश से पहले पशुपालन में आर्थिकी उपाय, यानी कौन सी आर्थिक उपाय और तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपकी लागत बचे और मुनाफा बना रहे। तो आइए किसान साथियों, आपको सुनवाते हैं डॉक्टर जय सुंदर से की गई यह बातचीत।
4: अडोर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
5: नमस्कार
4: अडोर साहब। जैसा कि मैं कह रहा था, सबको इंतजार है।

0: बारिश का, मानसून का। तो जैसे ही ये मौसम में बदलाव होता है, धूप के बाद बारिश आती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तनाव पशुओं में होते हैं। तो कौन कौन सी सावधानी किसानों को बरतनी होगी, या क्या क्या आशंकाएं हो सकती है?
1: नमस्कार एक बार फिर से। ये बहुत ही एक अच्छा मुद्दा है आज किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। और बारिश का मौसम आते ही हम देखेंगे कि जानवरों में, खासकर मुर्गियों में, बकरियों में, सुअर में, गाय में, भैंस में, सभी पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से हम पहले बात करेंगे मुर्गियों में,
0: जी
1: क्योंकि मुर्गियों में हम अक्सर देखते हैं कि मुर्गियां एक ऐसे ये पक्षी है जिनमें बीमारी की समस्या काफी अधिक हो जाती है। खासकर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो घरेलू पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं,
0: जी
1: जो
0: हाँ
1: हम जिसे हम कहते हैं कि रूरल पोल्ट्री फार्मिंग,
0: अच्छा, घर के
1: उस
0: पिछवाड़े
1: घर
0: जो
1: के
0: पालते हैं
1: पिछवाड़े
0: जो
1: में जो मुर्गी पालते हैं, उसमें भी काफी बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। अगर हम देखेंगे कि बीमारी जब आती है ये बारिश के वक्त में, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे रानीखेत बीमारी एक है, मुख्य रूप से है। एक दूसरी बीमारी है गंबोरो बीमारी, जिसको हम इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज भी कहते हैं। और तीसरी जो मुख्य बीमारी है जो बारिश के मौसम में अक्सर देखा गया है, उसे हम कहते हैं कि कॉक्सिडियोसिस, यानी कि रक्त, ये
0: खूनी जो दस्त
1: खूनी जो
0: होती है,
1: दस्त होता है
0: लाल
1: उसे हम
0: दस्त,
1: कहते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ, तो ये सब प्रमुख बीमारियां हैं। तो इससे बचने के लिए क्या पहले से कुछ एहतियाती उपाय यानी सावधानी के उपाय किसान भाई कर सकते हैं?
1: जरूर कर सकते हैं। मुर्गियों में बचने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि उनका टीकाकरण, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैसे तो आमतौर पर टीकाकरण हम देखते हैं कि ब्रॉयलर, यानी कि जो
0: मांस
1: सफेद
0: वाले जो
1: जो
0: है,
1: मांस वाले, और या जो लेयर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो फार्म में पाली जाती हैं, उनमें दिया जाता है। लेकिन यहाँ के वातावरण और जलवायु के हिसाब से यहाँ पे रानीखेत बीमारी और इन्फेक्शियस गंबोरो डिजीज, या तो बर्सल डिजीज जो है, इन दोनों बीमारियों के लिए टीकाकरण बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए यह करना चाहिए कि रानीखेत टीकाकरण के लिए एक दिन के चूजे जो होते हैं
0: जी
1: उनमें वैक्सीन देना चाहिए, टीकाकरण देना चाहिए। आमतौर पर किसान भाई ये देखते हैं कि टीकाकरण जो होता है 100 के डोज में आता है,
0: जी
1: मतलब एक जो वायल रहती है, एक शीशी रहती है, उसमें करीब 100 मुर्गियों के लिए डोज होता है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, उनके पास 10 मुर्गी होती है, 20 मुर्गी होती है। इसलिए पशुपालक जो भी सोचते हैं कि अगर हम एक टीका खरीदें तो नुकसान हो जाएगा, इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं कि 3-4 किसान एक साथ मिलजुल कर एक साथ जाकर वेटनरी डिस्पेंसरी से टीका ले लें, या तो बाजार से उस टीका को लेकर लगा दें।
0: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बारिश शुरू होने से पहले आपने कहा कि रानीखेत का जो टीका है वो एक दिन के चूजे में दिया जाता है, तो ये जो बड़ी मुर्गियाँ होती है खासतौर पर जो घर के पिछवाड़े जिसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि 20, 15, 25 मुर्गियाँ जो घर के पिछवाड़े रहते हैं, तो उनमें बड़ी मुर्गियों में भी कुछ टीकाकरण मानसून से पहले हो सकता
1: बड़ी
0: है?
1: मुर्गियों में भी टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। ये रानीखेत का जो मैंने बताया, एक दिन के चूजे के अलावा ये सभी वर्ग के मुर्गियों में ये प्रभाव डालती है रानीखेत की बीमारी। और इसे ये देना चाहिए कि इसका डोज हम 28 दिन के अंतराल में एक इसका बूस्टर हम देते हैं। उसके बाद कम से कम 6 महीना के जब हो जाते हैं मुर्गी, उसे हम रानीखेत का एक डोज इसको देना बहुत ही जरूरी है। खास तौर पे जो लेयर वाली मुर्गी है, जिसे काफी दिनों तक ये रखते हैं ये किसान भाई। और इसके अलावा जो गंबोरो बीमारी है, इस गंबोरो बीमारी का जो टीका है, इसे कम से कम 10 या 12 दिन का जब चूजे हो जाए, उसे ये देना बहुत ही
0: अच्छा
1: जरूरी है।
0: जी, डॉक्टर साहब, आपने कोक्सीडियोसिस या जो लाल दस्त वाली जो बीमारी है उसका भी जिक्र किया, मेरे ख्याल से ये जो दाने होते हैं उससे ज़्यादा फैलते हैं और बारिश के दौरान ये इसमें संक्रमण या दाने खराब होने का डर ज़्यादा रहता है।
1: दाने खराब होने का डर भी रहता है, क्योंकि बारिश में अक्सर ये ध्यान देना चाहिए कि गर्मी के बाद तुरंत जब बारिश आती है, ये ध्यान देते कि उनका जो फर्श होता है, मुर्गियों का जो फर्श होता है, ये जो कॉक्सीडिया की जो बीमारी है, नमी अगर हो जाए फर्श में, आमतौर पर देखते हैं कि कई किसान भाई यहाँ पे फर्श जो है पक्का का फर्श नहीं बनाते हैं, या तो तख्ता का भी फर्श नहीं बनाते, मिट्टी का फर्श होता है।
0: जी
1: तो फर्श में क्या हो जाता है कि मिट्टी में नमी अगर ज्यादा हो जाती है, तो ये कॉक्सीडिया के जो जीवाणु है वो उसमें ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस की बीमारी हो सकती है। इसलिए ये ध्यान देते हैं कि कोई भी उसमें नमी ना पैदा हो, उनका जो फर्श है थोड़ा सा जमीन से ऊपर हो। अगर मुर्गी घर में कहीं भी कोई जगह में पानी आने की संभावना है, उसे रोकने के लिए उनकी जो दीवार है, छत, उनको दुरुस्त कर लें,
0: पहले से
1: और
0: कर
1: ये जो पहले
0: लें।
1: से ही दुरुस्त कर लें। ये दाना से ये भी बीमारी हो सकती है, लेकिन दाना से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये जो फंगल वाली बीमारी है

0: यानी कि जो ये
1: फफूंद से जो होता है।
0: एफ्लाटोक्सिन की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए नमी में ये ध्यान देना चाहिए कि बारिश के मौसम में इसमें नमी ना पड़ने दे, दाने को हमेशा एक सुरक्षित जगह पर ढक कर रखे, फर्श से थोड़ा सा ऊंचा रखे, या तो कुछ मचान टाइप का अगर बना दे, और साइड का जो दीवार है उससे भी थोड़ा सा दूर कर कर रखे।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, अब जहाँ तक पशुओं का सवाल है तो मेरे ख्याल से बारिश से सबसे ज़्यादा बकरियाँ ही प्रभावित होती हैं, और जब वो भीग जाती हैं पहली बारिश में या बारिश शुरू हो जाती हैं तो उनमें निमोनिया या और इस तरह के बुखार वगैरह का भी खतरा रहता है।
0: बकरिया में एक निमोनिया का जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम तौर पर बीमारी है। पूरे भारतवर्ष में निमोनिया से करीब 25% जो बकरियां हैं ये मर जाती है प्रतिवर्ष। तो इसमें ये हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी बारिश होती है, और बारिश में भीगने के बाद क्या होता है कि बकरियों के शरीर में जो नमी हो जाती है, नमी काफ़ी दिन देर तक रहती है। अगर हम उसे ठीक तरह से पोछे ना और उसे ठीक तरह से ना सुखाएं तो उनमें निमोनिया की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। निमोनिया एक बहुत सारे कारक हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन करके ये पता किया है कि एक माइकोप्लाज्मा निमोनिया उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु है, उसके कारण यहाँ पे काफी समस्या हो जाती है, खास तौर पर बरसात के दिनों में।
1: जी हाँ, और जहाँ तक सुअरों का सवाल है, निकोबार ज़िले के जो हमारे किसान हैं सुअर पालन बहुत करते हैं, तो जैसे ही बारिश शुरू होती है इनमें भी कुछ खतरा रहता है।
0: सुअर में भी खतरा रहता है। वैसे तो सुअर में यहाँ पे एक ही बीमारी की समस्या है जिसे हम स्वाइन फीवर कहते हैं, या कि सुअर का जो फ्लू है, बीमारी है, उसे कहते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी सुअर हैं सभी में काफ़ी मात्रा में ये बीमारी की ये जो कारक है हमें मिला है। इसके बचने के लिए एक ही उपाय है, किसान यहाँ से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो इसका निरंतर टीकाकरण करती है। आप उनके संपर्क में लेकर अपने जो भी सुअर है उनका तुरंत उनका टीकाकरण करवा लेने से ये इस बीमारी से बचा जा सकता है।
1: जी हाँ, अब ये बात भी हमेशा देखने में आती है डॉक्टर साहब, जैसे बारिश शुरू होती है नए नए घास खिलने लगते हैं, खास तौर पर जो गाय होती है उसमें पतला दस्त अक्सर देखने में आता है, तो ये किस कारण से होता
0: बहुत ही
1: है?
0: अच्छा सवाल आपने किया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि गर्मी के बाद जब पहली बारिश आती है, पहली बारिश के बाद हम तुरंत देखते हैं कि चारों तरफ हरी हरी बहुत ही नरम नरम घास उगाते हैं, और जो पशु हैं मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो गाय के जो बच्चे होते
1: जी हाँ,
0: हैं मुख्य रूप से 5 या 6 महीने या 7 महीने के, वो तुरंत उसके तरफ आकर्षित होते हैं और खूब उसमें घास चर कर खा लेती है। इसके कारण दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दस्त सिर्फ हरा घास या हरा चारा खाने से नहीं होता है, हरे चारे में हरे घास में एक प्रकार की एक परजीवी उसमें रहती है, उसका नाम है फेसियोला स्ट्रोंगाइल और नेमाटोड, यानी कि रिंग वॉर्म, जो
1: अच्छा
0: गोल कृमि होते हैं, पेट पर जाकर पशुओं के नुकसान पहुंचाती है। ये सभी कृमि के जो अंडे रहते हैं वो घास में मौजूद होते हैं, और खास तौर पर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में ये जो कृमि है जितने भी, इनका जो जीवन चक्र है ये बढ़ जाता है, इनकी जो संख्या है काफी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इनका जो जीवन चक्र है वो रुक जाता है, और खास तौर पर हम देखेंगे कि बारिश के मौसम में इनका जो जीवन चक्र है वो फिर से
1: शुरू
0: चालू
1: हो
0: हो
1: जाता
0: जाता
1: है,
0: है, शुरू हो जाता है, और इनका जो प्रकोप है काफी बढ़ जाता है।
1: और इसी कारण ये जो डायरिया या पतली दस्त जो होती है
0: मुख्य रूप से
1: दिखाई देने
0: बारिश के
1: लगेगा।
0: मौसम में
1: जी
0: हम जो पतली दस्त वाली जो समस्या हम देखते हैं गाय में या तो बछड़ों में, ये मुख्य रूप से ये गोल कृमि और फेसियोला यानी कि लिवर फ्लूक,
1: अच्छा
0: इन
1: हाँ
0: इन दोनों के संक्रमण से ये होता
1: जी,
0: है पतली दस्त।
1: और जब बारिश होती है तो पानी भी थोड़ा सा गंदा होता है शुरू शुरू में, तो ये जो दूषित पानी है इससे भी पशुओं और मुर्गियों में समस्याएं हो सकती है।
0: हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कई किसान भाई यहाँ पे अपने खेतों में कीटाणुनाशक है
1: जी
0: इनका
1: हाँ
0: काफी मात्रा में प्रयोग करते हैं। अभी धूप के मौसम में तो ये तो मिट्टी में अब्जर्व हो जाते हैं, मिट्टी इनको अब्जर्व कर लेती है, लेकिन बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि ये सभी बहकर नदी जो पास के जो
1: तालाब
0: तालाब
1: वगैरह
0: है,
1: जो है।
0: नाले हैं, उसमें चले जाते हैं, और अक्सर पशु क्या करते हैं कि चरते वक्त इस तालाब में भी उस
1: पानी
0: पानी
1: पी
0: का
1: लेते
0: सेवन
1: हैं।
0: करते हैं, पी लेते हैं, तो इसमें पशुओं में भी ये बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि इसका जो जहर होता है, इसका जहर भी हो सकता है, इनसे भी बचा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि पानी भी काफी दूषित हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी गंदगी जो है तालाब में इकट्ठा हो जाती है। इसके लिए भी हमें ये उपाय करना चाहिए कि पशुओं को हमेशा साफ सुथरा पानी हम दें। साफ सुथरा पानी के लिए हम ये कर सकते हैं कि ब्लीचिंग या तो क्लोरीन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अगर आप कोई बर्तन में पानी रखते हैं या तो ड्रम में पानी रखते हैं।

0: या तो सिंटेक्स में पानी रखते हैं तो उसको निरंतर आप तुरंत आप सफाई करना चाहिए, हमेशा उसको सफाई करना चाहिए, ब्लीचिंग से कर लें, क्लोरीन उसमें डाल दें, या तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल कलर वाली जो दवा किसानों को आसानी से मिल जाता है, उसको छोटा से एक माचिस जो तिली होती है उसके जस्ट एक सिरे से एक जितना आए उसको लेकर एक बाल्टी में ये डाल दें, मिला लें, उससे पानी का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। इससे ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा डालने से पेट में दस्त की समस्या हो जाती है। इसको हल्का सा प्रयोग करने से इसमें जो भी जीवाणु है विषाणु है पानी में मर जाते हैं, इससे आपका पानी पीने लायक हो
1: जाता
0: जाता
1: है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो पशुओं में तनाव आता है और जो परिस्थितियां बदलती है इससे बीमारियां आ सकती हैं। आपने खास तौर पर मुर्गी पालक किसानों को सलाह दी कि जो मुर्गी घर है उसको ठीक ठाक कर लें ताकि पानी या नमी की समस्या उसमें ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातों पर किसान भाई जरूर गौर करेंगे और मौसम के बदलाव के साथ साथ पशुपालन में जो समस्याएं आती हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे

0: इससे ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा डालने से पेट में दस्त की समस्या हो जाती है। इसका हल्का सा प्रयोग करने से इसमें जो भी जीवाणु है विषाणु है पानी में मर जाते हैं, इससे आपका पानी पीने लायक
1: हो
0: हो
1: जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो पशुओं में तनाव आता है और जो परिस्थितियां बदलती है इससे बीमारियां आ सकती हैं। आपने खास तौर पर मुर्गी पालक किसानों को सलाह दी कि जो मुर्गी घर है उसको ठीक ठाक कर लें ताकि पानी या नमी की समस्या उसमें ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातों पर किसान भाई जरूर गौर करेंगे और मौसम के बदलाव के साथ साथ पशुपालन में जो समस्याएं आती हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे मानसूनी बारिश से पहले पशुपालन में आर्थिक उपाय के संदर्भ में डॉक्टर जयसुंदर से की गई यह बातचीत। चलिए किसान साथियों, जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और माहौल में घोलते हैं सुरों का जादू। तो आइए मिलकर सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा और गुनगुनाता हुआ फिल्मी गीत।

0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे यह बेहद प्यारा, सुरीला और खूबसूरत सा फिल्मी गीत। उम्मीद है कि इस मीठे से गीत ने आपके मन को तरोताजा कर दिया होगा।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है उस घड़ी का जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब समय आ गया है हमारे आज के उस सवाल का सही जवाब जानने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे

पूछा था, प्रश्न था लोबिया किस तरह की फसल है, और इसमें विकल्प भी बताए गए हैं, पहला चारे वाली, दूसरा सब्जी की, तीसरा दाल की, चौथा हरी खाद की, या पांचवा इनमें से सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से सभी। लोबिया का इस्तेमाल चारे, सब्जी, दाल या हरी खाद के रूप में किया जा सकता है। किसान साथियों, चलते चलते बस यही कहेंगे कि खेतों की हरियाली अगर हमारी शान है, तो खूंटे पर बंधा या बेजुबान पशुधन ही हमारे घर की असली लक्ष्मी और जान है। उम्मीद करते हैं मानसूनी बारिश से पहले पशुपालन के आर्थिक उपायों और डॉक्टर साहब की सलाह पर आप अमल जरूर करेंगे और अपने बेजुबानों को सुरक्षित रखेंगे। इसी सुंदर बातों के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, और अब रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म रेडी से। नीलेश मिश्रा के गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। गायक कलाकार है RFA खान और तुलसी कुमार।

लीजिए, अब सुनिए, शंकर महालक्ष्मी और श्वेता और कृष्णा को फिल्म रुद्राक्ष में। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लो ने।

लीजिए अब सुनिए मीत ब्रोस अनजान का गाया गीत। फिल्म है रागिनी MMS 2। गीतकार कुमार।

लीजिए सुनिए अब एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही सूचना समाप्त हुई।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

0: the dance floor. श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आनंद ले सकेंगे 7:20 पर। सात बजकर 30 पर युवाणी में विश्व महासागर दिवस पर चर्चा और गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। और रात्रि 10 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले इस सभा के कुछ कार्यक्रम। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी 5:25 पर। सुबह 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे अमरुद के अधिक उपज कैसे, विषय पर जानकारी। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा निकाह शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। सात बजकर 15 पर देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भोले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप खेल जगत कार्यक्रम के तहत योग और जीवन शैली विषय पर आयुष अस्पताल के योग प्रशिक्षक श्री अजीत कुमार दास के साथ ली गई भेंट वार्ता सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे उस्ताद सहित सावरी और फरीद सावरी। ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कहा कि वंचित और गरीब वर्ग का उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने जनसेवा और विश्वास के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। फ्रारगंज विकास खंड के छोलदारी गांव में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन 13 जून को सिप्पीघाट में चैन ट्रायल का आयोजन करेगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा का उल्लेख किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित कर रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
7: लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश में 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 2400 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा स्वराज द्वीप में पारदर्शी कायाक संचालन के लिए पर्यटन हितधारकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पहल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जल क्रीड़ा

दिशा निर्देश 2015 के अंतर्गत कराए गए जोखिम आकलन प्रतिवेदन के अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके तहत स्वराज द्वीप के नीमो रीफ जेट्टी क्षेत्र में पारदर्शी कायाकिंग गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने की योजना है। प्रस्तावित संचालन क्षेत्र जेट्टी से नीमो रीफ तक विस्तृत है, जिसके भौगोलिक निर्देशांक निर्धारित किए गए हैं। इस क्षेत्र को कायाकिंग गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना गया है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा जेट्टी लाइट हाउस कायाकिंग क्षेत्र में भीड़ कम करना तथा पर्यटन हितधारकों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है, साथ ही प्रभावी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना है। नीमो रीफ क्षेत्र अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता तथा जल के नीचे स्थित वनस्पति एवं जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। पर्यटन अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में केवल पारदर्शी कायाक संचालन की अनुमति दी जाएगी। इच्छुक कायाक संचालक केंद्र एवं पर्यटन हितधारक 12 जून तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, खेत बचाओ अभियान और रोइंग चैंपियनशिप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। फरारगंज विकास खंड के छोलदारी गांव में पिछले दिनों खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख वैज्ञानिक एवं टीम लीडर डॉक्टर पी के सिंह ने की। कार्यक्रम में कुल 25 किसानों ने भागीदारी की। डॉक्टर पी के सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि वर्षों से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग के कारण कृषि भूमि की उत्पादकता में गिरावट आई है। उन्होंने ढेंचा जैसी हरी खाद की फसल, संतुलित एनपीके उर्वरक उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने पर बल दिया। जलीय कृषि वैज्ञानिक चितरंजन राउल ने धान की खेती में एजोला के उपयोग पर तकनीकी सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने स्थानीय जलीय खरपतवारों के उपयोग से खाद निर्माण की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। कृषि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ डॉ. शरद येलीगर ने किसानों से संवाद करते हुए द्वीपों में बदलते कृषि परिदृश्य पर चर्चा की। अंडमान एवं निकोबार रोइंग एसोसिएशन द्वारा चैन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रायल खेलो इंडिया जल क्रीड़ा परिसर सिप्पीघाट में 13 जून को प्रातः 6 बजे से शुरू होगा। इस चयन ट्रायल का उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की रोइंग टीम का चयन करना है, जो आगामी अंडर 23 राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2026 में भाग लेगी। यह प्रतियोगिता 24 जून से 27 जून तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आर्मी रोइंग नोड पुणे के सहयोग से किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी अपना पंजीकरण 9434284756 पर करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 जून है। स्कूल ऑफ नर्सिंग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी की गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन 15 जून से 14 जुलाई तक ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार अपने दावे एवं आपत्तियां ऑफलाइन जीबी पंत अस्पताल स्थित पुराने ओपीडी भवन में प्रस्तुत कर सकेंगे। अंतिम मेरिट सूची 29 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी तथा काउंसलिंग की संभावित तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है। उद्योग निदेशालय अंडमान एवं निकोबार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के अध्यक्ष द्वारा एक पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विवाद समाधान योजना के अंतर्गत की जा रही है। इसके तहत विधिक परामर्शदाता के एक पद पर संविदा आधार पर मार्च 2027 के लिए नियुक्ति की जाएगी। यह पद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उद्योग निदेशालय श्री विजय

0: पुरम में स्थित होगा। भारतीय तटरक्षक बल जहाज की श्री विजयपुरम यूनिट 24 जून को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ब्रिजगंज बैफल रेंज में फायरिंग अभ्यास करेगी। इस फायरिंग अभ्यास का उद्देश्य प्रशिक्षण एवं परिचालन तैयारी को सुदृढ़ करना है। इस दौरान आसपास रहने वाले नागरिकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कहा कि वंचित और गरीब वर्ग का उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने जनसेवा और विश्वास के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। फरारगंज विकास खंड के छोलदारी गांव में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन 13 जून को सिप्पीघाट में चैन ट्रायल का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री इलाकों पर खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 जून तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल।

एमवी हटवे 10 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। 11 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। रिटर्न अमान जाने के लिए एमवी कमलवे कल यानी 9 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर एमवी कालीघाट 11 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनगौरी माकाचुहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 15 तारीख को सुबह 5 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान सिंधु नैनकौरी होते हुए कैमल बे जाने के लिए 9 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 11 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटन कल सुबह 6 बजे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी पिलोमिलो कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजदीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी जॉलीबॉय कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम

बस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुँचेगा। एमवी पिलोमिलो स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 10 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: जन सूचनाएं इसके अंदर अंतर्गत सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले जब दिल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले।
0: कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म यादें से। गायक कलाकार है आशा भोसले और उदित नारायण। आनंद बख्शी के बोल को सुरों में ढाला है अनु मलिक ने।

ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं महबूब की गीत रचना। गायक है रेमो फर्नांडिस, फिल्म है बॉम्बे।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किनारे से टकराकर लौट जाना उसकी हार नहीं होती, लहरों में छिपा दर्द समझने की हर किसी में बात नहीं होती। वो समेट लेते हैं खुद में दुनिया भर की नदियों का शोर, मगर महासागर की अपनी खामोशी का कोई तोड़ नहीं होती। दोस्तों, आज 8 जून है। प्रत्येक वर्ष आज के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश हिस्सा महासागरों का है। महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं, बल्कि वे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। महासागर जलवायु को संतुलित रखने, ऑक्सीजन उत्पादन करने तथा करोड़ों जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागरों में पाई जाने वाली सूक्ष्म पौधों द्वारा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त महासागर वैश्विक व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के प्रमुख स्रोत भी है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में महासागर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मत्स्य दोहन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर क्षति पहुंच रही है। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही बढ़ता तापमान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि भी चिंता का विषय है। दोस्तों, महासागरों की सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। प्लास्टिक का कम उपयोग करना, समुद्र तटों की स्वच्छता बनाए रखना, जल संरक्षण करना तथा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संदेश देता है कि महासागर हमारी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। यदि हम उनका संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ और समृद्ध समुद्र जीवन का लाभ उठा सकेंगे। इसीलिए महासागरों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, आज माह का दूसरा सोमवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। दिल की वीरान गलियों में सन्नाटा उतर आया, दिल की वीरान गलियों में सन्नाटा उतर आया, तेरी यादों का मौसम फिर से लौट कर आया। जख्म इतने मिले कि अब शिकायत भी नहीं, जख्म इतने मिले कि अब शिकायत भी नहीं, हर आंसू ने मुझे जीने का हुनर सिखाया। दर्द की इंतहा पर भी तेरा नाम रहा, दर्द की इंतहा पर भी तेरा नाम रहा, टूट कर भी ये दिल तुझसे ही जुड़ पाया।

एक शाम तेरी याद ने दस्तक सी दी, एक शाम तेरी याद ने दस्तक सी दी, बीती मुलाकात ने फिर हलचल सी की। लब खामोश रहे आंखें सब कह गई, लब खामोश रहे आंखें सब कह गई, वो चंद लम्हों की बातें सदियां बन गई। आज भी दिल उसी मोड़ पर ठहरा है, आज भी दिल उसी मोड़ पर ठहरा है जहाँ पहली नजर ने मोहब्बत लिखी।

मेरी कहकशां में कभी चांद सितारे थे, मेरी कहकशां में कभी चांद सितारे थे, तेरी हंसी के उजाले ही सहारे थे। वक्त की धूल ने सब रंग फीके कर दिए, वक्त की धूल ने सब रंग फीके कर दिए, जो कभी ख्वाब थे अब बस नज़ारे थे। फिर भी उम्मीद का दीप जलाए बैठा हूँ, क्योंकि तेरे नाम से ही मेरे सवेरे थे।

अब के बरस भी तेरी राह तकता रहा, अब के बरस भी तेरी राह तकता रहा, हर बारिश में तेरा अक्स ढूंढता रहा। बादलों ने कई दास्तानें सुनाई मगर दिल बस तेरी ही बात सोचता रहा। मौसम बदल गए साल भी गुजर गया, मौसम बदल गए साल भी गुजर गया, पर ये इश्क तेरे नाम से धड़कता रहा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त समीना बानू को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में

आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप का प्रसारण विषय रहेगा आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
3: नमस्कार। यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर
4: बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना

0: कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसा आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद है, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा

0: पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे? क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि
1: जी सर,
0: आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर
1: बिल्कुल
0: ऑफ TRP की रेस में नहीं है,
1: जी
0: बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र हैं जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहाँ ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूँ तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव
1: जसदेव
2: सिंह,
1: सिंह
2: ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साधन, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, गोवा CM डेड। अब ये हो गया।

0: शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया,
1: अच्छा
0: उसके चलते वो गुवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज़ एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज़ एजेंसी से आप उसको कंफर्म
1: जी,
0: करें। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए,
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए, जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर किए हो?
2: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
2: और आज वो बापू धाम बन गया
1: बापु।
2: और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने यह साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसान

सपनों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि

0: था। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स थे, हमारा परिचय रहा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं। महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की भी बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती हैं उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि उनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो

0: विशेष कार्यक्रम मनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है,
1: बिल्कुल
0: उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी
1: डेमेल
0: मेलो वाली
1: हाँ
0: जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि
1: कवि
0: सम्मेलन होते
1: सम्मेलन
0: थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: बच्चन जी
0: कवियों
1: हो,
0: को,
1: पंत जी हो, सबने
0: बंत जी हो,
1: महादेवी वर्मा
0: सब
1: हो,
0: ने, सुरेंद्र शर्मा जी
1: सुरेंद्र
0: हैं,
1: शर्मा
0: तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे
1: बिल्कुल हाँ
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गांव में आज भी उन कार्यक्रमों की
1: बिल्कुल
0: प्रासंगिकता
1: बिल्कुल
0: है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी तो आर्थिक जगत में
1: आर्थिक जगत की
0: क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सामयिकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर। मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था। उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेल्टन रिकॉर्डर हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, हम डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना
1: जी
2: चाहता
1: कीजिए।
2: हूँ, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे
1: जी।
2: और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नज़दीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर

0: डायरेक्टर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है, और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के

0: ए, हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
2: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत ना तो बीबीसी से पीछे है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, ना चाहे डॉइच वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
3: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है,
1: बिल्कुल,
3: और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर,
1: बिल्कुल,
3: तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
4: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
4: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
3: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
5: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: मैं डॉक्टर पार्लू

0: वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम
0: जी
1: चल
0: सर
1: रहे
0: जी,
1: हैं
0: विविध
1: और
0: भारती
1: कवियों
0: पे,
1: को लेकर भी चल रहे हैं,
0: विविध
1: और यहाँ
0: भारती
1: भी बहुत
0: पे
1: सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत
0: प्रोग्राम
1: चल रहा
0: है,
1: है। महिलाओं
0: अभी भी
1: को
0: चल
1: अचार
0: रहा
1: बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम है उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कभी पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे हैं जो लोकप्रिय है। जी, मैं एक बार आपसे और जानना
0: जरूर पूछ लीजिए।
1: चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत एक कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को, और क्या उनका रहता था?
2: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं। तो देखिए, वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में, सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति और खासतौर समाचारों के
2: देखिए,
1: प्रति।
2: जैसे जैसे समय बदलता गया, तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल,
2: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह
2: करते
1: 8 बजे
2: हैं
1: शुरुआत होती है वो
2: तो
1: रेडियो।
2: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन
1: बिल्कुल,
2: आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
3: क्वेश्चन प्लीज।
4: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी,
1: अच्छा
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे,
1: अच्छा
4: सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में
1: आकाशवाणी का
4: जो
1: योगदान है आपके।
4: आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
6: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे, उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े
6: तो
1: बड़े
6: यहाँ पे
1: संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
6: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं, और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पे अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
7: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
8: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की

0: पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का

कहना है कि रितव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग, हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण

समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फ़ोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117, या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की, या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है।
0: जी,
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह के खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएँ, कौन सी किस्म लगाएँ जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ से लेना चाहिए और किसानों

0: वो अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकल करना चाहिए, और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो
1: बिल्कुल
0: और
1: जी,
0: हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
1: पूरी हो जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार
2: नमस्ते मैडम जी,
1: जी।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: सभी मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं। और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
1: हो जाती
3: और
1: है।
3: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90वीं स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार

0: एफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है,
1: जी
0: बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी कमी बहुत ज़्यादा है। और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसलिए
0: तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है कि जो
0: ज़रूरी है।
1: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
2: जी नमस्ते
1: नमस्ते।
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़
1: जी
2: से।
1: जी
2: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से, जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकते हैं उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
3: योगेश
1: डबासिया
3: जी, जो भी हमारे फसल के अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा पीडी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो
4: हेलो
1: जी अनिल जी।
4: मैम, हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
3: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूँगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
5: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा

0: उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए।
1: जी डॉक्टर मीना।
2: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले 2 मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी वे सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर श्रोताओं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
2: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप ज़रूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पर, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है। यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएँ और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएँ।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर
3: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्सिडी हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गाँव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियाँ भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये

0: बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं, तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे, तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जो उनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है, जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें, और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और कोई बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूँ में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान के उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना, आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या MP में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पर छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिस पे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है, और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके

0: जैके ही उसका हेल्पलाइन सेंटर पर जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी, ये नंबर है 1800 1850 1551
1: जी
0: 1551। तो
1: जी
0: ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर है। इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे, 0112584 1670। ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन मैं यहाँ एक और जो अभी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ। खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी, आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है, उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: प्रियंका जी आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताए, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी
2: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
2: जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है? और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है। तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या है, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर शब्द उपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की ज़रूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें रात्रि के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। संदेश आते हैं।

श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर अपने फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें जम्मू से रशीद, रोशन और प्रमोद ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नसीब का ये गाना, जिसे गाया है डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथी। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और जेपी दत्ता की आवाज़ों में फिल्म बॉर्डर का ये गीत। गीतकार जावेद अख्तर तथा संगीत अनु मलिक का है। फरमाइश भेजा है राजस्थान से प्रदीप नवीन और मंजू ने।

0: मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गांव में।
1: कमल से नितेश सुनना चाहते हैं फिल्म ओम जय जगदीश का ये गाना, जिसे लिखा है समीर ने तथा संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। गायक कलाकार है अभिजीत हरिहरन, के अलका याग्निक और साथी।

राहत फ़तेह अली खान और रीटा शर्मा की आवाज़ों में सुनना चाहते हैं फिल्म ओम शांति ओम का ये गाना। गीत जावेद अख्तर का है तथा संगीत विशाल शेखर का है। टेरलाबाद से फरमाइश भेजा है संतोष, शोभना और लवी ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम संदेशे आते हैं सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों में खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 जून तक समुद्र में ना जाए। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकांतीय स्थानों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकेगी, साथ ही भारी वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी

चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हेलो हेलो माइक टेस्टिंग फोर हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 4 AM 50 मिनट्स 8 सेकेंड हेलो हेलो माइक टेस्टिंग टाइम 4 AM 50 18 सेकेंड्स माइक टू।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:26 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।